बसल कपड़े पैरे तुरक बठाने में किया चारे वेद होए सचया पड़े गुणत्र चारों चार पाओ पक।

0: करे मुड कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए न काए, पाए पोड़ी जो सो पाई है।
1: सो साहिब सदा सुमाली जित किता।

0: एक बार हो दूजी न जाए सो करे जित से जाए सो करे जित से न जाए सुध।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख कहु कहना सकत केहे अचल मूरत अनुभव।

त्रिपवण महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तव सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया पवजल विच्चों काड़ के मुकत पदार्थ माए समाया

0: हर हर नाम पवित है मेरी जिंदड़िए, जप हर हर नाम उदारे राम।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त कर दे आ रहे हो। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों बिहागड़ा राग दे अंदर शांत रूप विच जो पावन शब्द उचारण किते हन, जिस विचों अज दा ए पावन शब्द जो चार पदियां वाला है, पहले दो पदियां दा पाठ आप जीयां ने सरवन कीता। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी पावन अंग 539 दे उपर सुभायमान है। धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी कृपा करदे हन, इस शब्द दे राही असीं अपनी जिंद नूं समझाउणा है और बड़े प्यार दे नाल समझाउणा है। मेरी जिंदड़िए, हे मेरी जिंद, जीव आत्मक तल ते एक गल गुरु रामदास महाराज दे राही असी समझण ते समझाउण दा यतन करना है। जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़िए, हर कीरत हर मन तारे राम। हे मेरी जिंद जिंदड़िए, जगत दे अंदर जग दे गगे नू सिहारी है, जगत दे अंदर इस दुनिया दे अंदर बहुत तरह दे कर्म जड़े ने ओ हो रहे ने, पर सब तो उत्तम कर्म केड़ा है, परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ के परमेश्वर दी उस्तत उदी सिफत सलाह करनी, ये सब तो उत्तम कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है, सुकृत चंगी कृत। दुनिया भर दे विच अगर तुसी देखोगे ते लोक तरह तरह दी कृत कर रहे ने, कर्म कर रहे ने, कोई किसे तरह दा, कोई किसे तरह दा, कोई किसे दा दिता हुआ मंत्र जप रहा है, कोई किसे तरह दा दसिया हुआ उपा कर रहा है, अनंत तरह दे कर्म हो रहे ने, पर सब तो उत्तम कर्म है परमात्मा दे नाम नाल जुड़ना। इसलिए मारे कहिंदे जग जगत विच सुकृत चंगी कृत कीरत नाम है, कीरत दे तत्ते नूं सिहारी है कीर्ति उस्तति, होवे सिफत खसम दी, सिफत होवे और होवे उस मालक दी। इस संसार दे विच और मेरे इस जीवन दे विच जिनी सब तो वड्डी बख्शिश वरत रही है, जिन्हें मैनू ये जीवन दिता है, जिस परमात्मा ने जिन कन कीते अखी नाक जिन जेहबा दिती बोले तात, असी उदी कीर्ति करनी है, उदी उस्तत करनी है। दुनिया दे विच जिहड़े मायावी पदार्थां दे नाल जुड़े हुए ने, तुसी देखो ओ परमात्मा दी उस्तत नहीं करदे, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਮਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਫਲ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੇ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਕੀਰਤ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਉਸਤਤ ਕਰ, ਹਰ ਮਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ मन दे विच परमात्मा दे नाम नूं वसाउण दा यतन करना है। तो गुरु साहब कहिंदे हर हर नाम पवित है मेरी जिंदड़िए, जप हर हर नाम उधारे राम। हे मेरी जिंदड़िए, परमात्मा दा नाम जिहड़ा है वह पाक पवित्र नाम है। तो जे असी नाम जपना तो साडा ती अंदर भांडा मलीन होया पिया, मैला होया पिया। परमात्मा दा नाम पवित्र है, पवित्र भी कि पुनीत कर देने वाला है। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, पर अंदर भांडा ते मैल नाल भरिया। कहिंदे तू परमात्मा दे नाम दी उस्तत कर, ये नाम ने ही तेनू अंदरों पवित्र करना है, होर कोई तरीका नहीं। जे असी कहीए भी तीर्थां ते इस शरीर दी चुभी लवा के इशनान करके मैं पवित्र हो गया, मैं अपने अंदर दी मैल धो ली है, ये साडा भुलेखा है। जिन्ने भी तीर्थ ने असी उन्हां तीर्थां ते जाके इशनान करके आखीए कि मेरे सारे पाप धोते गए, ये भुलेखा है साडा। शरीर दे इशनान दे नाल मन दे पाप दी मैल नहीं उतरनी। तन धोता मन हच्छा ना होए। मन नूं पवित्र करन वास्ते, अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते सानू नाम दा अभ्यासी होना पएगा, नाम दा अभ्यास करना पएगा, तां अंदरों असी पवित्र हो सकते हैं। अंदर दी मैल, विकारां दी मैल नूं जे कोई उतार सकदा है ते केवल परमात्मा दा पवित्र नाम ही उतार सकदा है। इस वास्ते हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़िए, हे मेरी जिंदड़िए, ये नाम पाक पवित्र है। जप, इनू जप मन दे राही। जदों इनू असी मन दे राही जपांगे ते अंदर भांडा जिहड़ा वह पवित्र हो जाएगा। मत मलीन है, मत वाश हो जाएगी, मन विचों मत विचों मैल निकल जाएगी। हर हर नाम उधारे राम, ते जदों अंदरों मल निकल गई फिर ये नाम ही साडा उधार करेगा, होर किसे तरीके नाल साडा उधार नहीं होना। असीं जीवन मुक्त नाम दी कमाई करके ही हो सकते हैं। असीं जन्म मरण तो रहत नाम दी कमाई करके ही हो सकते हैं। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया, जिन्हें ते आया है अंदरों ओ पाक पवित्र होया ते उदा उधार हो गया। जिन्हें अंदर दी मल नहीं धोती वह बाहरों जिन्ना मर्जी पवित्र हो जाए उधार नहीं हो सकता। वो जिंदगी दी बाजी हार ते सकदा है पर उदा उधार नहीं हो सकता। रोज पढ़ते हैं असी जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया। वो हार तो गए पर उधार नहीं हो सकिया। इसलिए ये नाम जिहड़ा सानू गुरबाणी दे राही दिता है ये अंदरों पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत होण वास्ते दिता है, ताकि इस नाम की कमाई करके उधार हो सके। इस शब्द दे राही अपनी जिंद दे नाल गल करदिया असी इस गल नूं समझना है और मन दे विच नाम नूं धारण करना है जी।
0: सब किल विख पाप

सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या।

वाजी पंच शब्द तित कर सुपागै, कर सुपागै शब्द वाजे कला जित करत हरिया, पंच दूत तुद वस किते काल कंट कुमारिया।

जे आनंद सुनो हो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात द्वैदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां।

संग संतन के पाइए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैमं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैमं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैमं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैमं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैमं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैवं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु। सारे जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।

रहाओ सचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट न जाए ना ओह मरे ना होवै सोग दिंदा रहे ना चुकै भोग गुणे होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वडे आप ते वड़ तेरी दात जेना दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें तृप्ता सहे मिल संगत गुण परगास जिना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया

दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर थरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बहिता कोई ना किसकी तरिया सिर से रिजक सवाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड आवै सै कोंसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए।

जाइए तेरा अंत ना परब्रया राग अस महल्ला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम पारा सबते आवहीं सबते आवहीं तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सौ तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी।

जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुझ जी जन नानक तिन कुरबाणा हरदे आवहें तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जैना हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुझ जी।

निरंकार निर्विकार निर्लंब आदयनी अनादय संभ तक मूढ़ चारत पिता जाको पीव ना पावत बिदा ताको कृपाण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह पिब आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमड भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दखाए अचंप आदि जुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे आस्तु जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवै मरे पुरख जावन पग परे देहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट नह अह रक्षा होए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकि ताप तनक मैं हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फांसते ताहे ओ बारा।

मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सरठ मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो बारी सरठ मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभा बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिर अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता बाया सह सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्द तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सुधार हो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्यों नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जेना भुखा सब गवाइया करशां सुख मन बसिया जेना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहों जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंशवत घर सुपागे, घर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको से, नाम हर के लागे, कह नानक तें सुख होआ, तित कर अन्न हद बाजे, आनंद सुनहो बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पये सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुन ते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा पर बुरे, बिनवंत रान गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, सुनते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा पर उरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे। मुंदामणि महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उदारो, एह बस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसा चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारो।

नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन धीवे हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का।

हजूरी अंदर पंचम कला प्रसादी देख सज के हाजिर है। नर प्रवान हो गए प्रवान होया प्रसाद समूह साध संत विच वरतौन दिया गया बख्शो।

सपद दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृतार कालखन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेव

0: कल सहार सपद दीप मजार लहना जगतर गुर पास मुरार।
1: तैता हथरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजकर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान।

0: किरण अमृत कल बाणी गुर गम परमान तै पायो सत संतोख ग्रह जलयो हर परस्यो कल समूल वै जन दर्शन लहने पयो
1: मन विसास पायो गह

0: तीर्थ सच स्नान अर पूजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान
1: हमें दृढ़ शुभ करे हरेक पाप सगल मल काम क्रोध और लोम वस करे सबे बल सदा सुख मन बसे दुख संसारे खोवे गुरु नाम निदर आओ जन्म हम कालक धोवे सो को टल गुरु सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो को टल गुरु सेविए

उल्टत जात बिरख की छारों दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे पग

अर्था पूजा ग्रवास भयकार जोगी सुनतेन जित अलख नाम कृतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का सत्याम संतोख।